0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तीन मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया तीन मास पास करने है, फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को some

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं कि वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास कुछ होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन युग विश्व कल्याण करना है, तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन

खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों की फटाफट कर रही है। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बिजी रहती है ना, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना? जैसे एक सेकंड में 7 यूज करते हो, ऐसे ही एक सेकंड में

0: बिजी है, जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड चलो, है कोई ऐसा?
1: जानते हैं
0: हो सकता है पांडा, हो सकता टीचर्स, हो सकते और जो ऑफिस में काम करती है वो हो सकते हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दिल में चंदा तो लहरा लिया और कमरे का चंदा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का चंदा जल्दी से जल्दी लहराना ही है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं थे। इस जन्म का कनेक्शन तो बाप दादा यही चाहते हैं, इसी रखो चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, समय बिजी रहो, अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है भिन्न भिन्न, जानते हो ना ड्रिल शरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप स्मृति की ट्रेन जानते हो ना, जैसे बाप के तीन रूप है ऐसे आपके भी तीन रूप, ब्रह्मन फ्रिश्ता और देवता, इन तीन रूपों में ट्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रख, इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाड़ी, 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता। जिसको हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट और 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो, क्योंकि अभी भी बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सको। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाए। समय देंगे जितना हो सकता है उतना, बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय
दस मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा किए कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना पढ़ा सको उतना पढ़ा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन सभी के दिल में
2: मुबारक हो।

बच्चे के लिए। क्या चाहता है?

Samán. Sampan. Or Sampuran Banjai.

0: देखने अपने मन में अपने वृद्ध नया प्लान बनाया है ना, कुछ छोटा है और कुछ आगे बढ़ना है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना, अकेला तो रे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, पापा मेरा पापा, पापा हसर आपकी समस्या को हल कर देंगे, दिल से बोलना, पापा ये बात है, पापा ये करो, पापा ये, पापा बंदा हुआ है, लेकिन दिल से ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखने से अनुभव निकान पाव होते हैं, योग कान पाव होते हैं, लेकिन वायु मंडल का भी अनुभव ये अटेंशन निमित्त बने हुए आत्माओं को रखना उनकी विशेष सेवा। स्वयं अगर योग युक्त पर वायुमंडल में ठीक स्थिति में रहती है तो उनका प्रभाव सेवा स्थान पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। जैसे बाप दादा व बड़े निमित आत्माएं का वायुमंडल वाइब्रेशन पड़ता है ना, बाप दादा का वायुमंडल बदलता है तो हर बच्चे को वायुमंडल बनाने का, क्यों कि अभी अपने सेंटर्स का वायुमंडल बदलेंगे तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। निमित्त आपके स्थान सेवा स्थान पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को और पावरफुल बनो। जिसको देखे लोग शिकल से वाइब्रेशन से जान जाती है आजकल, क्योंकि आसुरी शक्ति का भी प्रभाव रोके बुद्धि में है, नॉलेज का भी प्रभाव है। इसलिए जो भी मीटिंग में आए हो हर एक जिम्मेवार हो, नहीं तो मीटिंग में नाम क्यों डाला। हिम्मत है ना तब आपका नाम हुआ ना। इसलिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जमा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सबके आगे अपना अनुभव सुना। नास्तक से आस्तक कैसे बना, बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारिया देती है, ब्रह्मा कुमार देती है, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोलने के लिए। अगर एक पॉइंट रही हुई है गीता का, भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होंगे ना। जब ये सिद्ध हो तब कहे भगवान आ गया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से क्रास तो करते ही

मेरे बाप दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं।

क्यों कपा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन सुनने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा, ये नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

So.

假装。Chamak. Chamak.

Honey Bee Beauty.

संतुष्ट आत्मा। मैं संतुष्टता का नेचर

っとした。

Yeah.

استت

0: दृश्य कितना भी बदलता, लेकिन साकी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट
1: just

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Isso, amiba.

Okay.

Hickenbop. फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल पर माया से

0: रोशन कर दे और बाबोश मिला दे कि तुम मेरे हो। मेरा बाबा कहाँ चला गया? तो बंद आंख याद के जादू से खोल देती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोचना अच्छा मैं आठ में तो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाएगा। तो 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द
3: जो
2: जो अलग अलग विचारत करती हो ना उसमें थक जाती हो। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही पुशारत करो साखी का तख्त नहीं छोड़ना और कुछ दिमाग तख्त नशी साखी बन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो, मैं कौन, मैं फ्रिस्ता, यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

起来。

पेंशन कम दे दे। हो जाएगा ये बीच में विघ्न डालता है। दृढ़

उसको चेक

कोई ना कोई श्रेष्ठ धारणा अपने दिल में करो। Let's go.

और एक संकल्प में हर रोज

रिजल्ट देखो जो संकल्प किया वो कहां तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई पहले उमंग बहुत होता है, पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, वो ढीला होने नहीं देना। करके ही दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं।

संकल्प सामने लाना। और रोज अमृत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सकते हो तो
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से प्यार है ना।

exercise करो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

Eduardo Mano. Vai.

Jo, aber ich sag's da nicht.

आवश्यकता से भी ज्यादा साधनों के आधार पर साधना कम है और साधन को प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए आज के भाव समान बनने के दिवस पर विशेष भाव दादा अंडरलाइन करा रही है कि साधनों के का अनुभव बहुत किया जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात साधन बहुत दिए लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे होते हुए दूर

Brahman.

found.

someone. Fishes.

0: ваших задан. Все скоро леген. Титана.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता सकते, प्यार ही आपकी समय की कंठिया, प्यार की कंठिया।

0: ายใจกิจนาพิตูตูเสียปรมตามสีตูรูอร์คอยติชนีปรมตามอุจิตอุจิตาม
1: Pochne ke liye bhi aate
0: रोज भी जाते हो, रोज दे भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन पाप रोसे हुए को भी मनाते आते। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है? बाप दादा के साथ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

समान भाव जल्दी बन सकते।

eso, a mí se

Schüttel. Sadai. Karte chalo.

आपा संसार दूसरा न कोई, इससे एकाग्र स्मृति में

0: अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं। कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी never।

tengo que hablar tan bien. Sarva con casa.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yep.

Mati.

сердце седен. Санг мирена. Ор уче те уче санг мирена. Кя мушке

Enough.

रंग से।

Mau kirup.

0: maldito for me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्वाभाविक वर्तन से I'm not afraid to die।

Sub-summer.

So.

Chief.

जा रहा है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बहुत दुखी है, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकारे अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकारे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो। कोई रहम नहीं कर सकता, इसलिए अभी समय पर मान रहम के मास्टर सागर बने।

její svarob. Lighthouseman. Sorry.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
2: Garam mein nirvikari,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन संपूर्ण स्थिति में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

करता, कुछ भी पेपर आवे, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी है, पक्का पक्का पक्का पक्का। पीछे वाले पक्के है ना, कच्चे को मारे

еще пациенток. Койки комсори. Тек. Васона. Peace.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

never.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी कर सकते हो।

0: इसको कहा जाता है साधना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: धन तो सबके पुराने हैं, चाहे जवान रहे चाहे छोटी और परों से भी कांकर कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दे रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है, छोटी है।

अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर धैर्य शक्ति से आप धैर्य शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन पाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में हो तो कैसी भी

sini karena ke kaum sih tak kekal ke bed jauh.

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी है, लेकिन आप ट्रस्ट

که سوچه گیر تو آرکی.

esas tribulaciones. Mírate y mira pan, mira nam karabunga, miri kilani oki, mira pachavar mochi, miri sas, miri kuesi kanti, y mira panatena. Sopati mira jahan bhi aaya wahan utik ka fira ho jata hai badal jati agar utik ka bhi badal diye na uljan mein समझ लो ये मेरा पन उसको चेक कर और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है दिल शिकस्त

0: சமரத்துவன் அவர் சன் ஷோஸ் ஃபாதர்
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: डबल फॉरेनर्स निमित्त बने सारे विश्व में बाप
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Fristi mânca în bucără.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुशारत के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अचानक और नासिक
2: चल कैसे रहेंगे।

0: स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं, चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी, तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इससे अभी ऐसी अनुभूति
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहा दूर भी बैठे हो सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय

叫，杰西叫，菲西，曼尔波蒂哥，control कर सको，फिर संकल्प，स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया हाथ है, जहां जाओ जब तक जाओ तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अचानक पेपर आने

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना,
3: सेवा के अनुभवी

0: चारी सब्जेक्ट में अनुभव स्वरों।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा। आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन पन की, कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय बुलाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण नहीं बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मानस से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते। जन्म में भी

0: ese.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आज भी सभी बच्चों को चाय यहाँ बैठी है, चाय समझते हैं सब चल रहा है।

ちは。

Amen.

Sa

0: Benani. इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रही है बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। पता है क्या देखा? कभी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कमा। दूसरों की बातें याद करते ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी। क्वेश्चन कि क्यों लग जाते, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते और कहते क्या है क्या करे। मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं जिसको आज आप मेरा कहती हो? वो मेरा है या रावण का है, किसका है? तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया है। और क्या जाते हैं ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे ये भी बाप दादा से रोरियां करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया, शक्तिवान भी नहीं सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्रह्मण जन्म लेते हुए दिए, याद है अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर शक्तिवान भव का वरदान दिया। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती। वो क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर आर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप आर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिकों वरदान दोनों स्वरूप की समृद्धि के स्थिति में रह के आर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाते। ये कभी शब्द अपने ब्रह्मांड डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर आप कहते हो ना कि बाबा आपको अब याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव हाथ उठाओ, अनुभव है अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हसूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है, तो मालिक बन के आर्डर करो। पढ़ाई करते हो शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सफल करा। सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करा। तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सुधई वृद्धि होती जाए। हिम्मत लाओ। बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में संबंध संपर्क में भी कर्म में भी मत लो। टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना। क्यों? क्योंकि टीचर्स को जो बाप की मुरली सुनाने की चांस मिला है और तख्त मिला है, ये एक्स्ट्रा मदद है। तो हिम्मत और खुलास दिलाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन पाई ना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बच्चों

しか。不安に。

yapmıştı. Casar no sei.

0: स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चेक करो, कभी दुख ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। फॉलो कर

chica, tú

जब नामी है दुख दुख देती है, इंसल्ट करती है, तो जानते हो कि ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना, तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है। खराब चीज अगर आपको देता है कोई तो आप ले लेते हो, समय नहीं थोड़ा समय। खराब चीज लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन

Nossa!

Sam.

स्वरूप में देखो। जानते हो आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशील हो जाते।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, कोई कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। Master knowledgeful, Master sarvashakti swaroop, to anubhavi swaroop banne mein kuch kami dikhai. Yeah.

Jesse.

tristeza, Rob.

0: Rinpoche.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

见。

सदा विजयी बनना। जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल। आपका जन्म से

0: बनना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज मुश्किल नहीं। जा भगवान है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बोल पे निर्माण बनो, बोल पे निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलती है, समझती है, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य % अपमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, सम्मान संपर्क में, ऐसे नहीं तीन बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ। लेकिन वो एक कमी पास विधान होने नहीं देगी। निर्माण झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे ऐसे कह देते हंसी में, क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी सुतह बना दे। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना दे।
3: Está
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे

फिर भी बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है, जब बाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो

0: तो अच्छा नहीं है। सब हम चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सजने बन के चल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य

Çorlak şey.

Çok vartman samet.

This is some empire.

0: tomado quebreta. Chupavna. Chupavna. Que verde. Or triste.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

जुदा ना थे न जुदा रहेंगे, विदा ना होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो बाप मेरे कंबाइंड चिंता बाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ। कहने तक नहीं, काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो, तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See?

ni por ti. Chao.

Çok haklı.

Courtney.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही, तो पेपर का तो चलेगा, सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा है मूल्यवान। शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओमंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ, अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं के पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे टीवी में, दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट

आपके चेहरे चमकते रहेंगे कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिलेगी।

0: così mi naisteri. Si col che dia. Mero a mot valukas.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आए ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। नहीं होता अविनाश।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने आवे।

वने स्वरूप को जानते ऐसा।

0: PS स्टेट में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष जैसी समझे मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो जिससे भी मिलो चाहे आपस संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि, भाई भी मणि।

0: संतुष्ट होगे तो दूसरे को भी संतुष्ट कर। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी पाप की देन, तो अविनाशी पाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज सम्राट बाप अपने स्मृति स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष
2: कुछ भी
1: विशेष स्मृति दिवस में अर्थात शनि के दिन में शनि में समय रहे ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों किया? मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना,

से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रैम दिल बनना ही पड़ता। कहते अच्छा अभी माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

to summer.

钱。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन अनुभव करो सामना करने की शक्ति। शोक युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथी है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, जो बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। दीवार पुरुषार्थी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Peace.

Jesse.

essayer un peu.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबको 什么？不能答应。也巴不得的个别的。
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आगे के लिए अब दीवार पुशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं उन लोगों को विशेष दृढ़ता की चाबी की So

0: सदासेज आगे बढ़ाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो, बहाने बाजी आलस अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत संकल्प स्वरूप में समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बच्चों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते है ना। आप विश्व में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फिर पका ये नहीं।

样啊。Ani to teti ena to adat perjadian anik.

是鬼不凶骨，加诺哥阿德特达隆布尼卡米阿尼基弗登我给马哈

onde? Na Terra. Na Terra. Yeah.

सोचना मुझे कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या होते हो, फिर तंग होते हो ना, तो फिर कहते हैं अभी पापा अभी पापा आने आप देते हैं और भगाए पापा क्यों? So nice.

0: शिवम सुंदरम
1: सत्यम शिवम सुंदरम
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सफलता का सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, इस निश्चय से नशे से रुआने नशे से आप माने नशा नहीं रुआने नशे से उड़ते चलो।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: थकान नहीं, जैसा मैं थकावट फील हो ना, तो कहां भी जाके डांस शुरू कर दो।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप मानते आपके कहने से पहले।

0: सोचना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ, मन में फिरती रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हूं, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है ना, दूसरे को नहीं देखना। बदले तो हम बदले, ये बाहर हटे तो मैं आगे बढ़ूं, न बाहर हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना है। ऐसे विघ्न
4: on

0: परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा, ये भी उड़ने नहीं देगा, ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचती है, ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रोकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वरश।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बहुत

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: esikole diba nabo. Jobia sayokie. Odoko.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज शिवरात्रि पर हर एक

क्योंकि संपूर्ण

अवस्था के अनुभवी बनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। तो मेरा स्वभाव, स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: फिर से इशारा दे रहा है। अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाए। अपनी चेकिंग बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती। दिल खुश, चेहरा खुश,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शरीर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

vive presto di me.

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का सलोकन रहा है, याद है? ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे। अगर ये समझ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सदा बाप के कंबाइंड रहना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आए पहुंचावे तो बाप को देने आता है। तो बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं एक मास हो गए, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता। और उस 15 दिन में अगर आपका काला जाए तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है। बच्चों का बोझ लेने के लिए कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है? वो हाथ उठाओ। हिम्मत रखे हाथ, शरीर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

you.

0: हो सकता
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपस में रह सला जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती।

0: आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूक्ष्म में उन्हों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उन्हों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।